मॉइस्चर हेदर एंटी एक्ने क्रीम तुमची पाव सलूर सो रुपये बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासुद स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सैलिसिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ सलूर उसपो की दनन दनन सासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती
2: ओ या गुते बेहरकत शिवी औ द चाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चले चाख पे औ लासुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो या द पटो मरीजान हुई या द माशुमान उखपी कगी हुई न दगटोल मरीजान द पारा द खुशालई खबर उस बाद हरिद्वार पर रोजबांदी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर तरसलो रो बजो पोरे द इस्लामाबाद.

0: पर 9387294 95। बैक टू बैक सास लाइफ कॉल्स। गुरम बच मास्टर पर लाइफ कॉल सुकरा जी हो द चेयरटन जी सिफर 9387284 95 वाणी बैक टू बैक सास लाइफ कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: ज़ख्म ना लश्मारा

0: अच्छा, जिस तरह मौजूदा हालात हैं उसमें तो यही लगता है कि हम मतलब जो है ना सारी उम्र रोएंगे। ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम, सलामना सलामना, संग मंग चल दे सह हालात वाकियाती ठीक ठाक ये खैर खरीत है यकीन अंदाज ब ठीक ठाक ये खैर खरीत सर भाई दिलबर रेडियो आवाज और दो दोपहर यो जहान मनना शुक्रिया मेहरबानी तशक्कर बीसीआर चेता सो ट्यून इन खड़े दे एफएम 94 यानी कि एफएम 94
1: हम तुझे भुला के रोएंगे
0: एफएम 94 दिलबर रेडियो सो भी आओ जनाब द दिलबर रेडियो आवाज दी ओत किच कमन द कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम जाय के और देशी जी ठूलू और दुन कुता ताहिर जमान जड़ना आओ जड़ द खुलूस नच कम देनो हरकले वई जी और डेर मनना
1: जख्म दिल छुपा के
0: जी दुमरा फमीन जकम न तास मुंग गग और जी ओ अफल समाथुन ता अफल वगुन ता मुंग आवाज कम देनो

अच्छा साथ साथ मैं म्यूजिक के हॉल से बात कर रहा हूँ. बात तो खैर जान म्यूजिक के हॉल से हो नहीं रही, बल्कि ये कि म्यूजिक के हॉल से म्यूजिक को हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं जी, डबिंग कर रहे हैं, इसके साथ मिक्सिंग कर रहे हैं. तो जनाब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इंसान क्यों थक जाता है. मतलब आपने मुझे इस हवाले से ये जरूर बताना है कि

क्या कोई रीजंस हैं या मतलब जो है ना क्या कोई वजूहत हैं सो लेके जो कमने अंदाज से वजह दाच इंसान प्रीडिक्ट इट कमने उस थोड़ी सी जी ठीक देखे ना एक्टिव यो खाना लग एक्टिव शे ये खतरमंदो ये जाना ना

0: होगा।
1: मैं लेसन्स कहना चाहूंगा आखिर में। अच्छा, आपके मैसेजेस भी काफी सारे यहाँ पे रह गए जी। मेरे अजीज सामीन, आज की गुफ्तगू के अख्ताम पर बस एक सवाल अपने साथ लिए जाइएगा। एक सवाल अपने साथ लिए जाइएगा, लेकर जाइएगा कि आखिर इंसान जिंदगी से क्यों थक जाता है। शायद इसलिए कि वो बहुत कुछ सह रहा होता है, बहुत कम कह रहा होता है। शायद इसलिए कि वो सबको समझते खुद को समझना भूल जाता है। शायद इसलिए कि कुछ ख्वाब वक्त से पहले टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग बगैर अलविदा के दूर हो जाते हैं, कुछ यादें इंसान के साथ रहकर भी मतलब जो है ना उसके उसे अंदर से खामोश कर देती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिंदगी से थक जाना जिंदगी से हार जाना नहीं। कभी कभी इंसान को सिर्फ रुकने, सांस लेने, अपने दिल को सुनने और दोबारा चलने की जरूरत होती है। शायद आप में से कोई आज रेडियो की उस साइड पे, रेडियो के उस तरफ बैठा हमारी बात सुन रहा हो और दिल में कह रहा हो कि हाँ मैं भी थक गया हूँ। तो मेरे दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। हर सवाल का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं है, हर जख्म आज ही भरना जरूरी नहीं है, हर रास्ता आज ही तय करना ये भी जरूरी नहीं है। कुछ फासले वक्त के हवाले कर देने चाहिए। कुछ यादें या कुछ यादों को जो है ना खामोशी से गुजरने दीजिए और कुछ लोगों को दुआ के साथ उनकी दुनिया में रहने दीजिए। आपकी कहानी अभी मतलब जाना खत्म नहीं हुई, आपकी कहानी अभी फिनिश नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। शायद वो बाब है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। अभी देखें, अभी आपकी कहानी का बाब कोई लिखा ही नहीं गया और अब इजाजत का वक्त आ गया जी। अजीब बात है ना, प्रोग्राम खत्म होने लगता है तो एहसास होता है कि अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। कुछ बातें माइक पर कह दी गईं, कुछ बातें दिल में रह गईं, कुछ शायद जो है ना आपने खुद समझ लिए और कुछ ऐसी हैं जिन्हें अगली मुलाकात के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि अगर हर बात आज ही कह दी जाए तो फिर अगले टाइम किस बात का इंतजार रहेगा। तो आप भी इंतजार कीजिएगा अगली मुलाकात का। शायद कि मैं रात को आऊं, रात को आप दोस्तों से मेरी मुलाकात हो, और शायद कि ना भी हो। यहाँ मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं कर सकता। अगर आप लोगों का फीडबैक, अगर आप लोगों की मोहब्बतें जिंदा रहीं, फीडबैक के जरिए आप लोगों ने मुझे महसूस किया, मुझे आवाज दी, तो जरूर हो सकता है कि मैं आऊं। तो आप भी इंतजार कीजिएगा जी। अगली गुफ्तगू का, उन नए लफ्जों का जो शायद है ना आज की बात से भी ज्यादा आपके दिल के करीब हों, शायद अगली बार हम जिंदगी के किसी और पहलू को छुएं, शायद मोहब्बत की कोई नई कैफियत लेकर आए, शायद किसी पुरानी याद को नए अंदाज में महसूस करें, या शायद किसी ऐसे सवाल का जवाब तलाश करें जो आपके दिल में बहुत अरसे से खामोश बैठा है। अब इजाजत चाहता हूँ मगर मुकम्मल अलविदा नहीं, सिर्फ आज के इस प्रोग्राम से इजाजत। क्योंकि कुछ मुलाकातें खत्म नहीं होती, सिर्फ अगली मुलाकात तक मौखर हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिल का ख्याल रखिएगा और अगले प्रोग्राम के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। क्योंकि शायद अगली बार जो बात हम कहें वही बात हो जिसका जवाब आपके दिल में या आपका दिल जो है ना आज तक तलाश कर रहा है। मैं ताहिर जमान आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। आवाज खामोश हो रही है मगर रब्ता खत्म नहीं हो रहा। अगली मुलाकात तक इसी फ्रिक्वेंसी पर इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह हाफिज, अलविदा एंड हल्दी पाकिस्तानियन की हमेशा रहे पाकिस्तान। अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल।

सिसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ जवानी देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे

यहाँ पे हमें मैसेज आया है डिसेंट गर्ल का। डिसेंट गर्ल भी हमारे साथ दे रही है, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुझे सुन रही है और ये कह रही है कि तमाम सुनने वालों को सलाम कहिएगा। कर है कि आप प्रोग्राम के लिए आ गए।

के लिसनर्स एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ट्यून इन किए हुए FM 94 रेडियो दिलवर सोबी। लिसनर्स बात करना चाहूंगा कि कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स आता है और हमें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स हमारी जिंदगी में आखिर क्यों आया है। हम उसे एक आम मुलाकात समझते हैं, एक आम बातचीत, एक आम ताल्लुक, एक आम दोस्ती, लेकिन वक्त गुजरता है तो हमें एहसास होने लगता है कि नहीं, ये इंसान आम नहीं था, इसकी मौजूदगी आम नहीं थी। और ऐसे इंसान के साथ गुजारा हुआ वक्त आम नहीं था, उस शख्स ने हमारी जिंदगी में आकर शायद कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया होता, शायद उसने ये भी नहीं कहा होता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, शायद उसने मुस्तकबिल की कोई जमानत भी नहीं दी होती, लेकिन उसके साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे हमारे अंदर ऐसी जगह बना लेते हैं जहां बाद में कोई और आसानी से नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और चल जाते हैं, लेकिन जाते हुए हमारे अंदर एक एहसास छोड़ के जाते हैं ना, एक ऐसी याद छोड़ के चल जाते हैं, एक ऐसी मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सुकून छोड़ जाते हैं जिसे हम बाद में बहुत तलाश करते हैं। और शायद जो है ना, शायद जिंदगी का सबसे अजीब सवाल यही है कि जो शख्स हमें सुकून देना सिखा गया वो खुद हमारी जिंदगी में क्यों नहीं रह सका। हम अक्सर समझते हैं कि जिंदगी में कामयाबी का मतलब ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी मसरूफियात और दुनिया में अपनी एक जगह बनाना, अपना एक स्टैंडर्ड बनाना, ये सब कुछ है। लेकिन लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि लेकिन जब रात को इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, दिन भर की थकन उतारता है, मोबाइल एक तरफ रखता है और चंद लम्हों के लिए अपने दिल की तरफ देखता है, अपने दिल की जानब देखता है, तो उसे अंदाजा होता है कि इंसान सिर्फ चीजें नहीं चाहता, मतलब इंसान को एक ऐसा एहसास भी चाहिए होता है, किसी के साथ चाहिए होता है, किसी की आवाज चाहिए होती है, कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसके सामने वो खुद को छुपाने की जरूरत महसूस ना करे। कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके सामने हंसने के लिए हंसना ना पड़े, मजबूत बनने की अदाकारी ना करनी पड़े, अपनी परेशानियां छुपाने अपनी परेशानियां छुपानी ना पड़े, बल्कि बस खामोश बैठकर भी ये महसूस हो कि सामने वाला समझ रहा है, नफसियाती

और मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि ताहिर जो है ना सो जाए। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मुझे एक एक मैसेज करके बताएं, ये तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं मतलब टाइम पे सो जाऊंगा, वक्त पे सो जाऊंगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि कुछ लोग या कुछ लोगों से बात करते हुए ना अचानक नींद क्यों आ जाती है, वो भी ऐसी नींद जो जबरदस्ती नहीं आती, जिसके लिए आंखें बंद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मतलब यूं होता है ना कि बस बातें चल रही होती हैं, आवाज सुनाई दे रही होती है, दिल किसी गुफ्तगू में मसरूफ होता है और अचानक आंखें बारी होने लगती हैं, सामने वाला पूछता है सो गए या क्या, या मतलब जाना कहीं नींद तो नहीं आ गई, सो गए हो, और हम आदि नींद में कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सुन रहा हूँ भाई। हालांकि आवाज में इतना ही सुकून आ चुका होता है कि खुद हमें भी मालूम नहीं होता कि बस अब चंद लम्हों की बात है और नींद हमें अपनी आगोश में ले जाएगी। और शायद ये सिर्फ है ना नींद नहीं होती, शायद ये उस बात का एक खूबसूरत इशारा होता है, या मतलब उस बात की तरफ एक इशारा होता है कि इंसान उस शख्स के साथ खुद को महफूज और पुरसकून जो है ना महसूस कर रहा है। और साथ साथ यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में हर शख्स के साथ बैठकर इंसान सो नहीं सकता। बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं? दुनिया में हर शख्स के साथ बैठकर इंसान सो नहीं सकता। कुछ लोगों के सामने हम मुसलसल खुद को संभाले रखते हैं, अल्फाज बड़ी बड़ी मतलब जो है ना यारी के साथ अदा करने की कोशिश, मतलब एक तरतीब के साथ अदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लिसनर्स, साथ साथ में ये नाहिद अख्तर की आवाज में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की गजल है, इसको शामिल करूंगा। ये रिमिक्स ट्रैक है और ये मेरे बैकग्राउंड पे हल्की हल्की हल्की हल्की चलती रहेगी, ठीक है ना? और इस बात पे मैं बात करता हूँ कुछ अपनी साइड से। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं इस हवाले से बात कर रहा था लिसनर्स कि दुनिया में हर शख्स के साथ बैठकर इंसान सो नहीं सकता। कुछ लोगों के सामने हम मुसलसल खुद को संभाले रखते हैं, अल्फाज सोच समझ कर बोलते हैं, अपने चेहरे के तासरात तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ अजीब सा इत्मीनान होता है ना, वहां इंसान को ये फिक्र नहीं होती कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं मेरी बात गलत तो नहीं समझी जाएगी। वहां इंसान बस इंसान रह जाता है, शायद इसलिए कि बाज़ औक़ात किसी खास शख्स से रात गए बात करते हुए आंखें खुद बहुत बंद होने लगती हैं, क्योंकि दिल को मालूम होता है कि यहाँ इसे मतलब पहरा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसे हर वक्त मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ खामोशी भी कबूल है और थकन भी। और जरा तसव्वुर कीजिएगा लिसनर्स, मेरे प्यारे लिसनर्स, कि रात का वक्त हो, बाहर खामोशी हो, कमरे में हल्की सी रोशनी हो, मोबाइल कान के करीब हो, दूसरी तरफ किसी अपने की आवाज आ रही हो, बातें कभी संजीदा हो रही हो, कभी हंसी आ रही हो, कभी पुरानी यादें निकल रही हो, कभी मुस्तकबिल की बात हो रही हो, कभी कोई कह रहा हो कि आज बहुत थक गए हो, दूसरा कह रहा हो थक मैं नहीं गया बल्कि जो है ना थक तुम गई हो, सो जाओ कल बात करेंगे, लेकिन दिल कहता हो नहीं अभी बात खत्म ना करो, और फिर इसी बात पे या यही बात करते करते नींद आ जाए। उस लम्हे में एक अजीब सी खूबसूरती होती है ना, क्योंकि इंसान को नींद भी आ रही होती है और वो ये भी चाहता है कि सामने वाले की आवाज चलती रहे, जैसे दिल कह रहा हो तुम बात करते रहो, मैं शायद जवाब ना दे सकूं लेकिन तुम्हारी आवाज सुनता रहूंगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है लिसनर्स के इंसान को मालूम होता है कि सामने वाला सो गया है, लेकिन वो फौरन फोन बंद नहीं करता, कुछ देर खामोशी से सुनता रहता है, शायद दूसरी तरफ से सांसों की हल्की हल्की आवाज। अक्सर हम ऐसे भी कहते हैं ना कि जानता मैं उधर की गजगम दे नौ सागा जगम दे नौ, ऐसा भी होता है ना।

आहिस्ता आहिस्ता सब सब आवाजों को अपने अंदर समेट लेती है या महफूज कर लेती है। जब शहर थक कर खामोश होने लगता है, जब कमरे की रोशनी मदम पड़ जाती है, इंसान अपने बिस्तर पर सुकून से लेटता है, तब दिल उन बातों को याद करने लगता है जो दिन भर कहीं अंदर दबी रही। और ऐसे में अगर कोई किसी खास इंसान की आवाज सुन ले, उससे बातें हो रही हो, कभी हंसी आ रही हो, कभी दिल की बात हो रही हो, कभी कोई पुरानी याद निकल आ रही हो, कभी मुस्तकबिल के ख्वाबों पर गुफ्तगू हो रही हो, तो फिर रात का हुस्न यही कुछ और हो जाता है। शायद इसीलिए बाद रातें खत्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इंसान चाहता है कि बस बात चलती रहे, आवाज चलती रहे, वो शख्स दूसरी तरफ मौजूद रहे, और नींद अगर आए भी तो उसी की आवाज सुनते सुनते आए। याद रखिएगा लेसन्स के, जरा तसव्वुर करें, आपकी रात काफी गुजर चुकी है, आंखों में नींद उतर आई है, मगर दिल अभी बात खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से आवाज आती है, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, रात बहुत गहरी होगी, और दूसरी तरफ से आधी नींद में जवाब आता है, बस 5 मिनट और बात कर लेते हैं। वो 5 मिनट पता नहीं कब आधा घंटा बन जाते हैं, आधा घंटा कब एक घंटा बन जाता है, और एक घंटा कब एक रात बन जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अल्फाज कम होने लगते हैं, आवाज आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगती है, जवाब आने में थोड़ा सा वक्त लगने लगता है, और फिर अचानक दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा जाती है। आप कहते हैं हेलो, सुन रहे हो, कोई जवाब नहीं आता। दोबारा कहते हैं अच्छा सो गए हो, फिर भी जवाब नहीं आता, और फिर दिल में एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा बातें करते करते आखिरकार नींद ने तुम्हें मुझसे चुरा ही लिया। लेसन्स कहना चाहूंगा कि कहना चाहता हूं लिसनर्स के, शायद असल खुशरू होती है, क्योंकि जब कोई शख्स आपसे बात करते करते सो जाता है, तो कभी कभी उस खामोशी में भी मोहब्बत महसूस होती है, और वो कुछ नहीं कह रहा होता, कोई जवाब नहीं दे रहा होता, कोई सवाल नहीं कर रहा होता, मगर फिर भी आपको उसकी मौजूदगी महसूस हो रही होती है। शायद आप फोन फौरन बंद नहीं करते, कुछ लम्हे खामोश रहते हैं, खामोशी से सुनते रहते हैं, जैसे इस खामोशी में भी कोई बात बाकी हो। आप जानते हैं कि वो सो चुका है, लेकिन दिल चाहता है कि थोड़ी देर और यही कैफियत रहने दी जाए, शायद इसलिए कि इंसान को सिर्फ गुफ्तगू नहीं चाहिए होती, कभी कभी उसे सिर्फ किसी अपने की मौजूदगी भी चाहिए होती है। और मोहब्बत में तो ये कैफियत और भी खूबसूरत हो जाती है ना लिसनर्स, जब आपको मालूम हो कि सामने वाला दिन भर की थकन के बाद आपसे बात करते करते सो गया है, तो दिल में एक अजीब सा एहसास आता है कि शायद उसे आपके साथ इतना सुकून महसूस होता है कि उसे अपनी थकन भी याद नहीं रहती। शायद आपकी आवाज ने उसके जहन का शोर थोड़ा कम कर दिया, शायद वो पूरे दिन दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन आपसे बात करते हुए उसे मजबूत बनने की जरूरत महसूस नहीं हुई, उसने बस आंखें बंद की और सो गया। क्या पता कभी कभी किसी के सामने इस तरह बेफिक्र होकर सो जाना भी जाना इस बात के खूबसूरत सा इशारा हो सकता है लिसनर्स के, इंसान उस शख्स के साथ खुद को महफूज तस्वर करता हो, महफूज समझता हो।

कितनी अजीब बात है ना लिसनर्स के, मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है, कितनी अजीब मोहब्बत है ना, जिसमें कभी कभी इंसान सामने वाले को जगाना नहीं चाहता, वो सोचता है कि आज शायद बहुत थका हुआ था, सो जाने दो, बात कल कर लेंगे, आज उसे आराम करने दो, और फिर फोन हाथ में लिए बैठा वो शख्स जिससे बात करते करते दूसरा सो गया था, खुद भी मुस्कुरा कर कहते हैं अच्छा अच्छा सो जाओ, मैं नाराज नहीं हूं। जुमला शायद कभी सामने वाले तक पहुंचता भी नहीं, मगर दिल फिर भी कह देते हैं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ वो बात नहीं जो सामने वाले को सुनाई जाए, मोहब्बत वो भी है जो इंसान खामोशी से महसूस करे। और कभी कभी इंसान को नींद इसलिए भी आ जाती है कि उसे पहली मरतबा ऐसे महसूस होता है कि उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, उसे ये नहीं सोचना, या उसे ये नहीं सोचना पड़ रहा कि क्या बोलना है, क्या छुपाना है, क्या साबित करना है, सामने वाला क्या सोचेगा, मेरी बात का क्या मतलब लिया जाएगा, बस बात कर रहा है, हंस रहा है, खामोश हो रहा है, फिर आंखें बंद कर रहा है। ये वो सुकून है जो हर इंसान को नसीब नहीं होता, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जिस्म से थके होते हैं मगर जहन से जागरे होते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं मगर ख्यालात दौड़ रहे होते हैं, आंखें बंद होती हैं मगर दिल में हजार सवाल होते हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान की आवाज सुनकर जहन आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगे और नींद आ जाए, तो ये कैफियत वाकई बहुत खूबसूरत महसूस होती है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ख्यालात की दुनिया के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। 03072700666 03072700666 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।

पहले सर बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि बात करना चाहूंगा लिसनर्स यहाँ पे कि कभी कभी इंसान को किसी शोर की जरूरत नहीं होती, किसी महफिल की जरूरत नहीं होती, किसी हजूम में बैठने का दिल नहीं करता, बस दिल चाहता है कि कहीं बहुत दूर चला जाए जाए जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ लिसनर्स के इंसान को किसी शोर की जरूरत नहीं होती, किसी महफिल की जरूरत नहीं होती, किसी हजूम में बैठने का दिल नहीं करता, बस दिल चाहता है कहीं बहुत दूर चला जाए, ऐसी जगह जहां आवाजें कम हो, जहां लोगों की गुफ्तगू ना हो, जहां मोबाइल की घंटियां ना हो, जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी हो और उस खामोशी के अंदर अपने ख्यालात की आवाज सुनाई दे। जरा तसव्वुर कीजिए, शाम का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे उतर रहा है, आसमान पर सुनहरी और नारंगी रोशनी फैल रही है, दूर पहाड़ों की चोटियां डूबती हुई रोशनियों में एक खूबसूरत सा साया बन चुके हैं, सामने एक दरिया खामोशी से बह रहा है, पानी कभी पत्थरों से टकराता है, कभी हल्की सी आवाज पैदा करता है और फिर आगे बढ़ जाता है और आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। मगर अजीब बात यह है कि इस तन्हाई में भी दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। ऐसे मंजर में इंसान अपने आप से बातें करने लगता है, अपने गुजरे हुए दिन याद करता है, कुछ चेहरे जहन में आते हैं, कुछ आवाजें कानों में गूंजती हैं, कुछ बातें जो कभी मुकम्मल नहीं हुई वो दोबारा दिल के दरवाजे पर आ खड़ी हो जाती हैं और इंसान सोचता है कि आखिर जिंदगी भी तो इसी दरिया की तरह है, चलती रहती है, रुकती नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, मगर अपने रास्ते में बहुत सी यादें, बहुत से चेहरे और बहुत सारे एहसास छोड़ जाती है। और फिर जरा उस शाम को और गहरा कीजिए। सूरज अब पहाड़ों के पीछे तकरीबन छुप चुका है, आसमान की सुनहरी रोशनी मद्धम हो रही है, हवा में हल्की सी ठंडक उतर रही है, दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं, जैसे वो भी दिन भर की थकन के बाद खामोश होना चाहते हों। दरिया की लहरें मुसलसल चल रही हैं, मगर इनमें कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस एक मुसलसल सफर है। किनारे पर एक शख्स खामोश बैठा है, हाथ में शायद एक चाय का कप है, सामने पानी है, पीछे पहाड़ हैं और दिल के अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसका किसी को कुछ पता नहीं। वो दुनिया जिसमें कुछ खुशियां महफूज हैं, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ पुराने दुख हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्त ने दूर कर दिया मगर दिल ने आज तक दूर नहीं किया। वो शख्स शायद बाहर से बिल्कुल खामोश है मगर अंदर हजारों बातें हो रही हैं। कभी वो मुस्कुराता है, कभी नजरें झुका लेता है, कभी पानी की तरफ देखता है, या कभी पानी की तरफ देखते हुए ऐसा महसूस करता है जैसे दरिया के साथ अपनी कोई कहानी बहा देना चाहता हो। याद रखिएगा लिसनर्स के तन्हाई में भी कुछ ऐसा होता है कि तन्हाई भी अजीब चीज है ना। जब इंसान हजूम में होता है तो उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वो तन्हा बैठता है तो दिल के अंदर छुपी हुई हर बात साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी की याद अचानक आ जाती है, कभी किसी का नाम जहन में आता है, कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी किसी के साथ गुजरा हुआ वक्त गुजरे लम्हात याद आ जाते हैं, कभी किसी के साथ गुजरा हुआ एक मामूली सा लम्हा अचानक बहुत कीमती महसूस होने लगता है। और फिर इंसान सोचता है कि शायद जिंदगी में बड़ी खुशियां हमेशा बड़ी चीजों से नहीं मिलती, कभी कभी कभी किसी
किसी की एक बात, किसी की एक मुस्कुराहट, किसी का पूछ लेना कि आप ठीक है, ये भी दिल के अंदर एक ऐसी जगह बना लेता है जहां बरसों गुजरने के बावजूद वो एहसास जिंदा रहता है। यही वजह है कि बास टाइम बास औकात तन्हाई हमें तोड़ने के बजाय हमारे अपने अंदर हमें खुद ले जाती है, हमें बताती है कि हम हकीकत में क्या चाहते हैं, किसको याद करते हैं, किसके लिए दिल में नरम कोशा रखते हैं, किस बात का अफसोस है और किस बात पर आज भी दिल खामोशी से मुस्कुरा देता है। अब शाम तकरीबन रात में बदल रही है, पहाड़ों के पीछे रोशनी आखिरी बार झलकती है और फिर आसमान पर नीली नीलाहट गहरी होने लगती है। दरिया अब पहले से ज्यादा पुरेसरार लगता है। इसके पानी पर आसमान की मदम सी रोशनी झलक रही है। कहीं दूर किसी परिंदे की आवाज आती है और फिर दोबारा खामोशी छा जाती है। दरख्तों से गिरने वाली हवा अपने साथ पत्तों की हल्की सी सरसराहट लाती है, जैसे कुदरत खुद कोई ऐसी दास्तान सुना रही हो जिसके अल्फाज इंसान नहीं समझता मगर एहसास समझ लेता है। और एक ऐसा वक्त भी आता है कि ऐसे वक्त में अगर आप किसी ऐसे शख्स को याद कर लें जिससे कभी दिल की बात हुई हो, जिसकी आवाज कभी आपके दिन का सुकून बन रही हो, जिसकी आवाज कभी आपके दिन का सुकून रही हो, जिसके एक छोटे से पैगाम का इंतजार कभी पूरी रात को खूबसूरत बना देता हो, तो फिर ये मंजर सिर्फ मंजर नहीं रहता, ये एक एहसास बन जाता है। पहाड़ उस शख्स की खामोशी को महसूस होने लगते हैं, दरिया उसकी बातों की तरह बहने लगता है, हवा उसकी याद की तरह चेहरे को छूकर गुजरने लगती है, और शाम जैसे दिल से पूछने लगती है कि जिसे तुम याद कर रहे हो क्या वो भी कभी इसी तरह किसी खामोश जगह बैठकर तुम्हें याद करता होगा। कभी किसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां हकीकत में जाना मुमकिन नहीं होता। लिसंस आंखें बंद करें तो शायद वही रास्ता सामने आ जाए जहां कभी किसी के साथ चलने का ख्वाब देखा था। शायद कोई पहाड़ी रास्ता हो, दोनों तरफ सरसब्ज दरख्त हो, नीचे दरिया बह रहा हो, हवा ठंडी हो, आसमान पर शाम का आखिरी रंग हो, और आपके साथ कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ खामोश रहना भी गुफ्तगू लगे। कोई लंबी बात ना हो, कोई वादा ना हो, कोई शिकायत ना हो, बस साथ चलना, कभी एक दूसरे को देख लेना, कभी दरिया की तरफ देखना, कभी आसमान की तरफ, और कभी यूं ही खामोशी में मुस्कुरा देना शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शक्ल है। सबसे खूबसूरत शक्ल यही है कि किसी के साथ रहते हुए आपको हर लम्हा कुछ कहने की जरूरत महसूस ना हो, क्योंकि खामोशी भी समझ आने लगे। और यहां ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसंस के, फिर रात आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर उतरती है, दूर किसी बस्ती की चंद रोशनियां दिखाई देती हैं, मगर इर्द गिर्द अब भी खामोशी है। आसमान पर सितारे एक एक करके नुमाया होने लगते हैं, दरिया अब भी बह रहा है जैसे उसे रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना सफर मालूम हो। और इंसान दरिया को देखकर सोचता है कि शायद हमें भी जिंदगी में ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग हमारे रास्ते में आते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं, फिर किसी मोड़ पर जुदा हो जाते हैं, मगर सफर खत्म नहीं होता। कुछ यादें हमारे साथ रहती हैं, कुछ दर्द हमारे अंदर खामोश हो जाते हैं, कुछ मोहब्बतें नाकाम रह जाती हैं, मगर इंसान फिर भी आगे बढ़ता रहता है। तन्हाई में सबसे ज्यादा याद वही लोग आते हैं जिनके साथ हमने कभी तन्हाई महसूस नहीं की थी। अजीब सा ताल्लुक है ना,
جس شخص کے ساتھ بیٹھ کر وقت کا پتہ نہیں چلتا, اس کے دور جانے کے بعد بھی ایک چیز رہتی ہے لیسنس کے, اس کے دور جانے کے بعد ایک لمحہ بہت لمبا محسوس ہونے لگتا ہے, جس کی آواز سن کر دل ہلکا ہو جاتا تھا, اس کی خاموشی دل پر بوجھ بن جاتی ہے, جس کے ایک پیغام سے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی, اسی کے جواب کا انتظار کبھی پوری شام کو رات بنا دیتا ہے, اور پھر انسان کسی پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر کسی دریا کے کنارے خاموشی سے اپنے ہی دل سے پوچھتا ہے, اپنے ہی دل سے پوچھتا ہے کہ آخر کچھ لوگ اتنے خاص کیوں ہو جاتے ہیں, شاید اس لیے کہ وہ ہماری زندگی میں صرف ایک شخص بن کر نہیں آتے, وہ ہمارے احساسات کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. شام سے رات کا یہ سفر بھی کتنا عجیب ہے, پہلے سورج ڈوبتا ہے, پھر رنگ مدم ہوتے ہیں, پھر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں, پھر ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی ہے, پھر پہاڑ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر دریا پر چاند کی روشنی اترتی ہے, اور پھر انسان اپنے ہی خیالات میں کہیں بہت بہت دور نکل جاتا ہے. شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اپنی فیلنگز, اپنے احساسات, جب دل اپنے اندر چھپی ہوئی باتوں کا حساب کرتا ہے, کون اپنا تھا, کون دور ہو گیا, کس نے سکون دیا, کس نے درد دیا, کس کا انتظار آج بھی باقی ہے, کون سا خواب ابھی ادھورا ہے, اور کس شخص کی یاد آج بھی دل کے کسی خاموش کمرے میں چراغ کی طرح جل رہی ہے. میرے پیارے لسنرز, میرے سویٹ لسنرز,

मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे स्वीट लिसनर्स, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। दिल के अंदर एक पूरी दास्तान होती है मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। मगर उसे सुनने के लिए वो शख्स मौजूद नहीं होता जिसके सामने कभी दिल की हर बात बेझिझक कह दी जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा होता है, दुनिया अपनी मसरूफियात में मसरूफ होती है। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा होता है, दुनिया अपनी मसरूफियात में मसरूफ होती है। लोग हंस रहे होते हैं, शहर रोशन होते हैं, रास्तों पर जिंदगी रवां दवां होती है, मगर इंसान के अंदर कहीं एक ऐसी जगह होती है जहां अचानक सब कुछ रुक जाता है। वहां सिर्फ एक नाम रह जाता है, एक चेहरा रह जाता है, एक आवाज रह जाती है, एक पुरानी सी बात रह जाती है। और फिर दिल खामोशी से पूछता है कि वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। ना वो पहले जैसी मोहब्बत दिखाता है, ना कोई नाराजगी खुलकर सामने आती है, ना मेहर बाकी रहती है, ना कहर, बस एक अजीब सी खामोशी होती है, एक फासला होता है, एक ऐसी सुकूत जिसका मतलब समझने में पूरी उम्र गुजर सकती है। और याद रखिएगा लिसनर्स कि इश्क जब करीब होते हैं ना, इश्क जब करीब होते हैं तो इंसान को दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वही इश्क रूठ जाए तो वही दुनिया अचानक बहुत अजनबी महसूस होने लगती है। वही रास्ते जिन पर चलते हुए कभी खुशी महसूस होती थी अब खामोश लगते हैं। वही शाम जिसमें कभी किसी की आवाज का इंतजार रहता था अब लंबी महसूस होती है। रात आती है तो नींद आंखों से जैसे पूछ कर आती है कि जिसे याद करना है पहले उसे याद कर लो। मोबाइल हाथ में होता है, उंगलियां कभी पुराने पैगाम तक पहुंचती हैं, कभी कोई तस्वीर सामने आ जाती है, कभी किसी पुरानी गुफ्तगू का एक जुमला दिल को रोक लेता है। इंसान चंद लम्हों के लिए मुस्कुराता है, फिर वही मुस्कुराहट आंखों की नमी में बदल जाती है, क्योंकि यादें भी अजीब होती हैं। जब तक किसी के पास हो खूबसूरत लगती हैं, और जब वो शख्स पास ना हो जिसके साथ वो यादें बनी थीं, तो वही यादें दिल के अंदर दर्द बनकर उतरती चली जाती हैं। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, उसका हाल हम क्या बताएं। शायद वो कभी कहीं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो, शायद उसे भी कभी हमारी याद आती हो, शायद किसी शाम वो भी खामोश बैठकर पुरानी बातों को याद करता हो, शायद कोई गाना उसे भी अचानक हमारी तरफ ले जाता हो, शायद किसी रास्ते से गुजरते हुए उसे भी कोई पुराना मंजर याद आता हो। मगर इश्क के हाल से मैं बात करना चाहूंगा लिसनर्स के, इश्क की सबसे बड़ी बेबसी यही होती है कि हम दूसरे के दिल का हाल यकीन से नहीं जान सकते। हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, मगर किसी के दिल के अंदर जाकर यही नहीं देख सकते, ये नहीं महसूस कर सकते लिसनर्स कि वहां हमारे लिए अब भी कोई जगह बाकी है या नहीं। और शायद इसी ला इल्मी का नाम सबसे गहरा दर्द है, क्योंकि अगर मालूम हो जाए कि सामने वाला बिल्कुल बेखबर है तो इंसान अपने दिल को समझा भी ले, और अगर मालूम हो जाए कि वो भी याद करता है तो शायद इंतजार को एक वजह मिल जाए। मगर जब कुछ भी मालूम ना हो तो दिल सवालों के दरमियान मुहल्लक रहता है। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, बस एक खामोशी है। ना वो पहले की तरह मोहब्बत से पूछता है कैसे हो, ना नाराज होते, ना शिकायत करता है, ना कोई गिला करता है, ना कोई शिकवा करता है।
جیسے تعلق کسی لفظ کے بغیر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہو جہاں نہ مکمل جدائی ہو نہ مکمل قربت. انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں سب سے زیادہ تھکتا ہے. میرے پیارے لسنرز, اپنے ہونے کا احساس دلوائیں, اپنی موجودگی کا احساس دلوائیں. وقت کا, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے. وفا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ وفا, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. فرید ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ملکنڈ سے, اور تمام سننے والوں کو سلام کہہ رہے ہیں فرید, بہت بہت شکریہ جی. فرید کے علاوہ بسما اگین سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, رستم مردان سے, بہت بہت شکریہ بسما. علی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ علی. اور علی کے بعد مروہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں کڑی سے, بہت بہت شکریہ جی کھڑی سے, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. باقی بھی کوئی اپنے ہونے کا احساس دلوانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ہے, میرے سنگ سنگ ہے, اپنی موجودگی کا احساس دلوا سکتے ہیں آپ. 0307 270 0666, 0307 27 00 666. اگین سے میں بتانا چاہوں گا دوستو, 0307 27 00 666. اچھا, میں ایک پاکستانی او ایس ٹی ٹریک پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹریک آپ لوگ انجوائے کریں گے, محظوظ ہوں گے, اپنا ساتھ ضرور میرے ساتھ کے ساتھ جی.

कभी कभी यूं भी हाँ मेरे रूबरू तुझे पास करके मैं रो पड़ू, कभी यूं भी आ मेरे रूबरू तुझे पास करके मैं रो पड़ू, मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन तुझे धड़कनों में सुना करूं, कभी सजा लूं तुझको आंखों में कभी तस्बीहों पे पड़ा करूं, कभी चूम लूं तेरे कभी चूम लूं तेरे हाथों को कभी तेरे दिल में बसा करूं।

पत्थर उठ जाए तो उसे बाहों में ले लेना बहुत ही पास करके तुम, बहुत ही पास करके तुम, उसे जाने नहीं देना। वो दामन छोड़ा भी तो उसे तुम कसम दे देना, दिलों के मामलों में तो खताएं हो ही जाया करती हैं, तुम उन खताओं को बहाना मत बना लेना। मोहब्बत रूठ जाए तो उसे तुम जल्दी मना लेना। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। खरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं वासी। अपनी शर्तों से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा अपना। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा अपना रहाना, इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी जो सितारा तो मैं तुम्हारा। और ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा, तो मैं तुम्हारा।